कॉल्ड किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, विच इज़ फ्रॉम द 1958 फिल्म अनाड़ी. इट इज़ संग बाय मुकेश. एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द सॉन्ग आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ इट. दिस इज़ किसी की मुस्कुराहटों पे.